शंकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां सरस्वती, अपनी कृपा का हमें वरदान दो। हे जननी, हम बच्चे हैं, शिशु हैं, अज्ञानी हैं। मां, तुम्हारी स्नेहमयी स्निग्ध दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत करो, जिससे हमारी मेधा प्रतिभा स्मृति तुम्हारे अलौकिक तेज से चमकने लगे। 64 कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादात्री तुम अत्यंत दयालु हो। हे मां शारदे, तुम्हें हर विद्या अभिलाषी का शतशः प्रणाम। मां सरस्वती, तुम हर विद्यार्थी को कदम कदम पर सिद्धि का वरदान देती हो। अत्यंत शांत भाव से अपने उपासकों द्वारा अनेक तत्व और व्याख्याओं की चर्चा कर नए सिद्धांत विश्व में प्रस्थापित करती हो। तुम ज्ञान को बढ़ाती हो, दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जाती हो। हाथ में वीणा और ग्रंथ धारण करने वाली शुभ्र कमल पर आसीन मां सरस्वती, तुम कला और विज्ञान का पवित्र मेल हो। दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य रखने वाला महान विवेचक श्वेत हंस तुम्हारा वाहन है। तुम्हारा वर्ण कुंदा के फूलों जैसा उज्जवल है और चेहरे पर मृदुस्मित हास्य शोभायमान है। कोटि सूर्यों के विद्या तेज से प्रकाशमान है। ऐसी मां शारदा देवी का कृपा पात्र होने की अभिलाषा से हर साधक प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यारंभ से पूर्व प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ये सरस्वती मंत्र पारायण करने से वो कल्प वृक्ष जैसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा उल्लेख देवी भागवत में है। परम दयालु नारायण जब वाल्मीकि के राम राम के जाप से प्रसन्न हुए, तब नारायण ने गंगा जी के किनारे वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी। उनके उपदेशानुसार वाल्मीकि ने सरस्वती मंत्र को सिद्ध किया और वे वाल्या से वाल्मीकि और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हुए। मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज हजारों वर्षों बाद भी रामायण की कथा सबसे अधिक सुनी और पढ़ी जाती है। ना मालूम ऐसे कितने विद्या रत्नों से जड़े हुए आभूषणों से मां विभूषित है। कितने सरस्वती उपासक उनकी कृपा से अमरत्व पाए हैं। प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में शिव पुत्र कार्तिक स्वामी की स्तुति है, जो स्कंद पुराण से है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 बार करने से विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और वो मां शारदा का कृपा पात्र हो जाता है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य विरचित शारदा भुजंगाष्टकम के नित्य श्रवण और पठन से हर विद्या अभिलाषी शिशु बालक तरुण और प्रौढ़ को उससे लाभ होगा। उसकी ग्रहण शक्ति स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी।

जीवन जैसे तूफानों में फंसी एक छोटी सी नाव है। कभी किनारा दिखता है, कभी अंधेरा ही।

प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय. माय डियर फ्रेंड्स, एट दिस टाइम लेट मी इनवाइट यू टू स्टैंड एज वी जॉइन इन चैंटिंग ऑफ गणेश आरती.

यतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. भगवान कृष्ण ही सेज ओ अर्जुन द मैन ड्वेलिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स ही डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम एंड फ्रॉम दैट अटैचमेंट स्प्रिंग्स अ डिजायर. व्हाट वाज द डिजायर ऑफ कार्तिके? ही वांटेड टू गेट द लड्डू. दैट वाज हिज डिजायर. And he says, from desire ensues anger. What happened to Kartike, friends? When he came back there, he saw Ganesh holding the laddu in his hand. And because he didn't get that desire fulfilled, what happened? He got angry. And so Bhagavan Krishna continues to say,